कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार के खातिर, इन्होंने लूटा है प्रदेश को, गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है, अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे अक्सर ज्ञान उनको है, वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि पांचवी क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। छठी सातवीं आठवीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो दो यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं, बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं, हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा बल्कि स्वेटर पहनकर के स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा।

0: are watching India Today.
1: On that note, we are in fact taking a look at one of the biggest stories that's developed today. It's a political storm that's brewing in the city of Bengaluru as we speak over a meeting that put the Congress government's relationship with the Adani Group under the spotlight. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar met Adani Group Chairman Gautam Adani on August 23rd at his residence in a meeting that lasted around 20 minutes. The meeting comes at a politically sensitive moment with an Adani Group company emerging as the lowest bidder for the proposed 17-kilometer Bengaluru Tunnel Road project. Now, Shivakumar says there was nothing political about the meeting, calling Adani's visit just a courtesy call and pointing to the jobs and investments the group is bringing to Karnataka. But the BJP is now turning the spotlight on Rahul Gandhi's long-running attacks against Adani. Karnataka Leader of Opposition R. Ashok himself is asking how Congress can target Adani nationally while hosting him in Karnataka and whether Rahul Gandhi has an explanation for this very meeting.
2: इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है.
3: और आफ्टर द फर्स्ट टाइम आफ्टर आई बिकेम ना चीफ मिनिस्टर ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
4: ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅದಾನಿ ಈಸ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. At least Mr. D.K. Shivakumar, I have to tell Mr. Rahul Gandhi, please correct your word. That I have to say Mr. D.K. Shivakumar to the Rahul Gandhi. Okay.
1: Video has triggered a political and sexism row in Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister Vijay's Minister Kirtana has hit back at what she calls a moral policing brigade. Kirtana lashes out after a video of a woman getting out of a car was used to target her. The minister clarified that the woman in the video is not her, but asked even if it were her, why should it matter? She accused the opposition of the manufacturing personal narratives when they cannot challenge leaders on policies, governance or their track record. She called sexism and filthy mindset targeting women the oldest political weapons of those who have nothing substantive to offer. On the other hand, it's the DMK who've made their stance clear, stating that nothing justifies misogyny and the party stands firmly for women's dignity. Meanwhile, TVK calls out the increasing cyberbullying against women, saying online abuse and public shaming are becoming increasingly common. The party has called for stricter action and tighter social media controls, stressing that women must not be targeted or judged online.
5: நீ செஞ்ச சத்தியமா நான் கட்டுப்புனா கட்டுக்கூடாத வழி இல்லையா? நம்ம செஞ்சதா அப்ப சொல்றான், நாங்க தான் அதை திறந்து ஏன்னா 100 நாள் என்னடிக்கு திறப்பான்னா அது சொல்றான். அவரோட சாதனை எல்லாம் அவ எடுத்துக்கிறார். இந்த பள்ளி கல்வி
1: Earlier, my colleague Anjali Pandey spoke to TVK leader Sasi Rekha about the fake video of Tamil Nadu Minister Kirtana that went viral on social media, where she called out the growing menace of cyberbullying. Let's listen in.
6: Personal harassment is not, we didn't know personal harassment. Many women are, in general, society is thinking women are weaker sex always. They think that is the matter. They think that women are weaker sex. We have to do anything. We have to do, we have to target those women. But the line between drawn in those things, the harassment and the public, that is private harassment and political women, that is social media only decides the thing. That is what we have to control, the social media first of all, then it comes to wind up. Most probably. In case, just a moment, in between these, women are mostly targeted more than 3 times at nowadays in these times of political women, particularly, and the MLA MP who are indulged in political women are 60% more than targeted than the usual times. And the NCRB data has given the cyber bullying is increased year by year. Mostly women photo and dress centric targeting are more than involved in the social media platforms. Social media, we have to control the social medias and we have to increase the actions in the cyber crime actions against women bullying is to the east.
1: All right. And focus on to the political battle over women's rights that has now exploded into a full-blown war of words between the Congress and the BJP, with Rahul Gandhi's remarks on Manusmriti, patriarchy and women's rights triggering a sharp counterattack, with the BJP putting Rahul Gandhi on the spot over the 33% women's reservation law. Now, Smriti Irani challenged Rahul to back the Nari Shakti Vandana Adhiniyam and supported swift implementation, arguing that the law will strengthen women's representation and enhance the dignity of parliament. BJP also questioning why Congress opposed the legislation and why Rahul Gandhi came out to vote against it. BJP also has come out to attack full Rahul Gandhi's broadside at the BJP RSS, accusing them of an anti-women mindset, invoking Manusmriti, calling for patriarchy to be smashed, and they've escalated the attack. That is, the BJP has escalated their attack, with Nishikant Dubey asking Rahul Gandhi to make way for Priyanka Gandhi, calling her way wiser than him, and citing Congress's own history with women leaders. Congress, too, has hit back. It is Pawan Khera who's accused the BJP and RSS of manufacturing a rift between Rahul and Priyanka and pointed to Congress's own record on women leaders.
7: Antar mantar mein galiyan ladkon ne bhi di aur ladkiyon ne bhi di. But Pradhan Mantri keh rahe hain ki gali dena cultural shock laga hame. क्योंकि लड़कियों ने गाली दी. लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है. मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता. मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है. खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं. तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है. माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए. वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते. हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए. और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए.
8: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें कर वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. एंड आई थिंक ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर अट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण की गुहार लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पुरजोर मुखालफत क्यों करी? अगर वो इतना ही नारियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उन्होंने लाल बटन दबाकर इस अधिनियम को संसद के पटल पर गिराया क्यों?
9: आज 50% आई एम एजुकेशन मिनिस्टर टुडे ऑफ द कंट्री, 44% एज इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन द डिफेंस सेक्टर, आवर पायलट्स, आवर एरोनॉटिक इंजीनियर. They are nearly about, all put together I am talking, they are 50%. And we are trying to give 33% reservation to the woman. Why are you opposing Mr. Rahul Gandhi? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न करना ही बेकार की बात है.
10: द इवेंट दैट हैपेंड वाज अ सक्सेसफुल इवेंट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू हियर द वुमेन्स वॉइसेस. इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव देम दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट देयर इज अ लीडर हु इज टॉकिंग अबाउट देम एंड टॉकिंग अबाउट हाउ दे हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट ऑफ पैट्रियार्की एंड फाइट दैट एंड स्मैश इट. सो आई थिंक दैट वाज अ वेलकम इवेंट एंड दैट इट हैपेंड इन पुणे इन महाराष्ट्र. आई वुड से दैट्स गुड बट बीजेपी विल कंटिन्यू टू से व्हाट इट वांट्स टू कंसीडरिंग देयर वाज सच अ ह्यूज यू नो नंबर ऑफ पीपल स्पेशली the women who were out. That just goes to show that the government has a lot to be held accountable for and people are now fearlessly coming out.
1: Let's take a look at this special report which brings us a comprehensive idea about all the developments that's taken place in the story since the very beginning. Take a look.
11: A fresh political flashpoint has erupted between Congress and the BJP. One over women's dignity and ancient scripture. Speaking at Pune's Chhatro Ki Goonj youth outreach program on August 22, Rahul Gandhi invoked the Manusmriti's verses that a woman should remain under the authority of male relatives. Rahul Gandhi called the idea a shame.
7: Pradhan Mantri keh rahe hain कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी. माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए.
11: The leader of opposition argued the mindset to suppress women stems from the Manusmriti, insisting women are not property but individuals in their own right. Rahul also accused the BJP and RSS of harboring a Manusmriti mindset that continues to shape attitudes towards women and called for young women to smash patriarchy.
7: ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है. आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो. आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है. मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है. स्मैश द पेट्रियार्की.
11: The BJP has hit back sharply, questioned Rahul's opposition to women's quota bill and accused him of selective outrage, pointing out the absence of women ministers in Congress-run Karnataka cabinet as proof of hypocrisy on women's representation.
12: Congress party ke ek ahem neta ne mahilaon aur mahilaon ke netritv ke samarthan ki baat ki hai. Main unse kehna chahti hu vinamrata purvak, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
11: What began as a call to smash patriarchy has now snowballed into a full-blown political slugfest. Bureau Report, India Today.
1: It's Congress MP Dipinder Singh Hooda who's facing intense backlash after his comments on the death of 1984 anti-Sikh riots convict Sajjan Kumar. Hooda has described the demise as a big loss and called Kumar a role model. Remarks that triggered outrage among the Sikhs and within the Congress. After the controversy, Hooda has taken a U-turn. Now, take a look at this news report.
13: Kumar, who was serving life sentences in connection with 1984 anti-Sikh riots, passed away on Thursday. But the demise of the former Congress MP who was behind killings of five Sikhs in Delhi has snowballed into a massive political storm. Congress Haryana MP Dipinder Hooda described his death as an irreparable loss and called him a role model.
14: Desh ke rajnitik kshitij pe ek aisi kshati hui hai jiski purti sambhav nahi hai.
13: The controversial comment triggered sharp criticism within the Congress, especially the Punjab Congress, which is facing a poll battle. Former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi slammed the comment and stressed that Sajjan Kumar is traitor and killer of Sikhs who disgraced humanity. Channi also claimed that calling Sajjan Kumar a role model was a sin.
15: Sajjan Kumar Sikh kaum da qatil hai, gaddar hai. Inne saazish kiti Sikhan nu maran di ar marwaye. ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ।
13: ਆਫਟਰ ਇੰਟੈਂਸ ਇੰਪਲੋਜਨ ਓਵਰ ਦ ਰਾਈਟ ਕਨਵਿਕਟਸ ਯੂਲੋਜੀ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਬੈਕਟ੍ਰੈਕਟ ਔਨ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲੇਮਡ ਦੈਟ ਹਿਸ ਵਰਡਸ ਵਰ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ।
16: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਥੀ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਡਾਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਨ ਲੋਗੋ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋ ਤੋੜ ਕਰ
13: Despite the clarification, the controversy continues to simmer in poll-bound state, which is already facing a divide between Channi and Punjab Kong Chief Amrinder Singh Rajawari. Bureau Report, India Today.

0: engineer. Vinay was living in Delhi with his wife Rekha and their 4.5-month-old twins. According to Vinay's mother, an argument broke out between the couple over applying medicine to their child. She alleged Rekha then called her brothers from her parental home. The brothers-in-law allegedly reached Vinay's house and assaulted him in front of his parents. And a neighbor later carried Vinay out for help, but he succumbed to his injuries. The family has now alleged that a domestic argument turned into a deadly assault, leaving Vinay dead inside his own house.
1: लोग यहाँ से भागे सभी लोग तो आप लोगों ने देखा क्या कंडीशन थी विनय की?
2: विनय की तो बहुत बुरी हालत थी. विनय को तुम संभाल ही नहीं पाए. वो तो उसी टाइम खत्म कर दिया था. थोड़े बहुत सांस चल रहे थे तो उन लोगों के साथ बोलने में लग गए. मेरी बहन है, मैंने इसको दे के भेजा. मैंने कहा तू विनय को ले जा. उसने रस्ते में ही बस थोड़े थोड़े सांस चल रहे थे, रस्ते में बस मौसी मौसी बोल के उसने रस्ते में दम तोड़ दिया. वो नहीं हॉस्पिटल भी पहुंचा.
1: माँ है आपका नाम? माँ है, आप देख सकते हैं घर के अंदर माँ के सामने उनके बेटे की 31 साल के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी माँ के सामने. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने डिटेन किया हुआ है कई लोगों को, इस पूरे मामले में डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने हत्या और दूसरी धाराओं में कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं,
2: जुड़वा बच्चे हैं, 5 महीने के हुए हैं. अपने बच्चों की भी उनका एड्रेस वगैरह बुद्ध बिहार बोल लो ना कि ये बुद्ध बिहार के हैं. वो
1: कितनी दूर है यहाँ से उनका?
2: 7 किलोमीटर, आधा घंटा तो लग ही जाता है.
1: तो आप फोन करके बुलाया था आपकी बहू ने?
2: अब वो तो वो जाने फोन ही करके बुलाया होगा या पहले से हो सकता है? पहले से छोटे मोटे तो जी मियां बीबी में हमेशा चलते रहते हैं.
1: परिवार में कई सारे लोग हैं, हम मौसी से बात करते हैं क्योंकि वही लेकर के गई थी. आप जब आप थी घर में?
3: मैं जब वो उसको नीचे लेके आ रहे थे ना तब आई थी.
1: अच्छा.
3: सीढ़ियों में था वो कि कोई उसको ऐसे कंधे में डाले हुए था, फिर उसको लाके इधर बाहर लेटा दिया. उसके बाद वो कह रहा मौसी मेरे को लेटा दो, मौसी मेरे को लेटा दो. फिर उसके मौसा, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गाड़ी में उसको लेकर गए. रास्ते में वो बहुत झटपट आ रहा था, कह रहा था मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे. फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ठीक हो जाएगा. उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके. धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया. मेरा बेटा का बोल रहा मम्मी बेहोश हो गया भैया शायद. मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के जा रहे हैं, ठीक हो जाए. डॉक्टर के पहुंचे तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया. छोटा सा ना वो, इतना हमारा वही सहारा था हमारा, उसको आप सजा दिलवा दो.
0: Canada-based gangster Goldeep Rar has allegedly admitted in a leaked audio clip to killing Hardeep Singh Nijjar, the wanted Khalistani terrorist whose murder outside a Sare Gurdwara in 2023 had in fact caused a lot of consequences in terms of chaos, both diplomatically as well as in the law and order situation in Sare itself. Rar, wanted in India for several murders, including that of singer-songwriter Sidhu Moosewala, was heard boasting in the purported clip that he had Nijjar killed because of the latter's involvement in the promotion of drug abuse. Goldeep Rar made the claim during a conversation with Khalistani terrorist Paramjit Singh Pamma.
4: ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ.
5: ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, 16-16 17-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਨਾ.
0: 15 months after India's Operation Sindoor targeted Jaish-e-Mohammed's key terror infrastructure, the terror group's headquarters at Markaz Shubana Line, Pakistan's Bawalpur,

0: इसमें कोई शक नहीं कि छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस आ चुके हैं जहां पे उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा और उन्होंने प्रूफ भी दिए कि किस प्रकार से पैसा देकर उनसे वीडियोस बनवाए जा रहे हैं। तो दिखता है कि किस प्रकार से एक पीयर स्टंट राहुल गांधी कर रहे हैं, ना कि छात्रों के हित की कोई बात कर रहे हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा आप सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर, इन्होंने लूटा है प्रदेश को, गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है, अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है, वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि पांचवीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। छठी सातवीं आठवीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो दो यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं, हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा बल्कि स्वेटर पहनकर के स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: A very good morning to all our viewers. It's Monday morning. You're watching First Up on India Today. I'm Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin, but we first focus on the headlines. Our focus continues to remain on the Manusmriti politics that's happening between the Congress and the BJP after Rahul Gandhi cited a verse of Manusmriti and slammed Manusmriti that it pages women, after which the politics has also erupted. Let's take a look at the headlines this morning. Political battle over Rahul Gandhi's women's empowerment goonch. Leader of opposition cites Manusmriti to target BJP and RSS. BJP says NDA has more women chief ministers and union ministers. Asks why he voted against women's quota law. A chilling echo of the Trisha Sharma case emerges in Delhi's Dwarka. Death of 3 months pregnant woman, 30-year-old Nazia Khanam, working in Defence Ministry, raises questions. Nazia's family alleges repeated mental, physical and dowry harassment by husband and in-laws. Sharp sugar price surge ahead of festive season triggers political war. Congress targets Modi government, pointing to 9-year low sugar stocks. Questions diversion of sugarcane towards ethanol. Centre hits back, cites red rot disease and El Nino factors behind price surge. Adani Group emerges as lowest bidder for DKS government's flagship tunnel road project. DK Shivakumar meets Gautam Adani, lauds him. BJP points to Rahul Gandhi's hypocrisy in attacking the businessman. Karnataka's Valmiki fund drought turns into a fresh political face-off. BJP JDS to lay siege to Vidhan Sodha. Alleged funds for tribal and Dalit welfare were diverted to Congress poll fund. Chief Minister DK Shivakumar says BJP resorting to hooliganism. Viral video of a woman getting out of a car used to target Vijay's cabinet minister Kirtana. Minister clarifies that woman in the video is not her, calls out sexism and filthy mindset targeting women, accuses opposition of manufacturing personal narratives. Jaish-e-Mohammed's key terror infrastructure rebuilt and operational in Pakistan's Bahawalpur. This 15 months after India's Operation Sindoor, India also moves to summon Lashkar-e-Toyba chief Hafiz Saeed in Pahalgam terror attack case.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार, अटूट भरोसा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही है तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: इसमें कोई शक नहीं कि छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस आ चुके हैं जहां पे उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा और उन्होंने प्रूफ भी दिए कि किस प्रकार से पैसा देकर उनसे वीडियोस बनवाए जा रहे हैं। तो दिखता है कि किस प्रकार से एक पीयर स्टंट राहुल गांधी कर रहे हैं, ना कि छात्रों के हित की कोई बात कर रहे हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जानकारी।
1: Friends have died in the fire tragedy being reported from Maharashtra's Amravati, where a fire broke out in the neonatal intensive care unit, which was located on the third floor. And according to initial reports, the fire started around 3:30 a.m. earlier today, following a suspected explosion in a ventilator. Now, upon the outbreak of the fire,
0: hospital में भर्ती करवाया गया था। बाद में परिजनों के बाद में जो है एक private अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद जो है यहाँ के स्टाफ ने जो है वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए जो भी बच्चा दिखे वो फटाफट उठा के जो है बाजू में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद जो है फायर विभाग, दमकलन विभाग भी यहाँ पर पहुंचा है मौके पर। उन्होंने भी जहाँ आग लगी थी और आग कम और धुआं ज्यादा था, जो है धुएं की वजह से जो है बच्चों की तबीयत जो है वो अधिक खराब हुई, जिसके बाद जो है उनकी मौत होने की जानकारी है। जिसके बाद जो बच्चे यहाँ इलाज कर रहे थे, जिनके बच्चे यहाँ पर इलाज कर रहे थे, उनके परिजनों का एक ही आक्रोश यहाँ पर दिखा है, क्योंकि तड़के सुबह सभी गहरी नींद में थे। बावजूद ये घटना जो सामने आई, यहाँ पर भगदड़ मच गई, तो जो परिजन है वो अपने बच्चों को लेकर जो है बड़ा चिंतित था। लेकिन इस सभी घटना के बाद जो है वो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। अब इस मामले में जो है दमकलन विभाग, पुलिस विभाग या जिला प्रशासन या जिला अस्पताल विभाग जो है इस मामले की जो है तहकीकात कर रही है कि आग कैसी लगी और इस आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं। इस पूरी मामले की जो है अब जांच यहां पर चल रही है। ऐसे में जिन परिजनों के बच्चे उन्होंने खोए हैं, उन्हें क्या पता था कि जिस अस्पताल में हमारा बच्चा यहाँ भर्ती है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, क्या उसकी मौत इस तरीके से दर्दनाक होगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। धनंजय साबले, अमरावती आज।
1: Some more news coming in. Kashmiri pundits face fresh terror threat. Lashkar proxy reveals pundit details. The pundit employees seek enhanced security after the fresh threat. Kashmiri pundits write to Jammu and Kashmir Chief Secretary. The migrant employees also seek protection. And the pundits say that terror threats will not scare us. The Kashmiri pundits have dared the terrorists to come out.
2: बुजदिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए, सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा वो पंटू के सामने भी आए कि हम रुक रुक हजूम में यहाँ पे आ रहे हैं। वो सामने नहीं है, पीछे से धमकियाँ देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो जमाना गया है। वो चू की तरह छुपे है बिलू में, अगर उनमें दम है वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत।
3: सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा, उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी, तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी। ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी, लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखेगा।
1: And my colleague Meer Fareed is now joining us with more details on this. Meer, what action is being taken by the chief minister, by the Jammu and Kashmir government after these fresh threats have been issued by the Lashkar-e-Toyba proxy against Kashmiri pundits?
4: Well, that's right, Anjali. In fact, the PM Package Employees Forum Kashmir, which is an umbrella organization of all the Kashmiri pundits who are employed in Kashmir as part of their rehabilitation plan, they have shot a letter to the Chief Secretary of Jammu and Kashmir and have demanded enhanced security measures, because this is the second such threat. As you said, this little organization by the name of United Liberation Council, which for many years is just another shadow of the Lashkar-e-Toyba, has come with this second threat letter. Last one on 7th August, pretty much similar content like this one, where they have even named certain Kashmiri pundits and even given their personal details like car registration number, mobile number. So that they're trying to convey that they know their addresses, etc., just taking the threat perception to the next level. So as is the SOP, the security forces, the government is also not taking it lightly. Behind the scenes, there definitely is a beef of security. Wherever threat perception is more, area domination is happening, especially if we talk of Shopian, where the villages where Kashmiri pundits live, security has been beefed up, area domination is happening. And on the other hand, there is also other measures that are being taken to identify these people, look at the threat and just scan it, see how genuine it is, and then accordingly act against it and people who are behind this. So this is happening at multiple levels, but of course, as far as Kashmiri Pandit people, especially employees who work in Kashmir, definitely they'll be in panic after such threats. But the government has assured them that there is foolproof security and all their concerns will be taken care of. Anjali?
1: All right, Amir, thank you for those details. So fresh threats have been issued by Lashkar-e-Toyba proxy in the valley against Kashmiri pundits. They've also made all their details public. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side. Stay with us.

आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 की 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे उस समय, निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।

0: Drivers in Ayodhya visited the Sri Ram Janmabhoomi Temple and Hanuman Gadi before attending the welcome program. He also recited the Hanuman Chalisa here at Hanuman Gadi. Now, the controversy has got to do with fish being prepared at a banquet hall where a welcome program was organized by the Congress chief of the state of Uttar Pradesh.
1: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं. अजय जी, यूपी की सियासत में मछली ने जगह बना ली है और आप एक जगह गए अयोध्या में, इसको लेकर इस पर बीजेपी की तरफ से फिलहाल तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं. आपका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर?
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है. इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, सबके सामने वो फोटोज वायरल हो रहे हैं, सबके सामने फोटोज हैं, और बाद में सफाई देते हैं कि मैं कटहल खा रहा था. साउथ में कटहल का कोई हमने तो व्यंजन देखा ही नहीं आज तक. मैं भी साउथ में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर और पूरे आंध्र में घुमा हूं, कहीं पर साउथ में कटहल का व्यंजन नहीं होता. वो फ्रूट के रूप में खाते हैं, कटहल को फ्रूट के रूप में खाते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका वहां पर नॉनवेज खा रहा है और ये सब ये बड़ी बात बोल रहे हैं. और हम सब लोग कल गए थे और हम तो भगवान के भक्त हैं. महादेव बाबा विश्वनाथ विराजमान है, ये देखिए विराजमान है. चंदन लगाए बाबा विश्वनाथ का, आरती का चंदन है ये. इनके तरफ दिखावटी नहीं कि गेरुआ पहन के झूठ बोलते हैं. रोज बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा. कहां दूध और कहां पानी, सब मिला हुआ है. और निश्चित तौर से मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में गया था, निषाद समाज ने कार्यक्रम रखा था और वो मछली बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं. उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका सेवन किया और उनके तो परंपरा में है मछली पकड़ना, मछली खाना, मछली बेचना. और वही निषाद समाज ने, शायद योगी जी को नहीं मालूम है, भाजपा को, इसी निषाद समाज के निषाद समाज ने भगवान राम को पार कराया था, नदी पार कराई थी जब वनगमन हुआ था भगवान राम का. और भगवान प्रसन्न होकर माता सीता ने उनको मुद्रिका दी और मुद्रिका उन्होंने वापस कर दिया और भगवान राम ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया. तो निषाद समाज पूरी तरीके से आज ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ठग रही है. इनका एक मंत्री है जो कहता है कि बिना लहसुन प्याज के मछली खाइए, कहता है कि नहीं खाता है. अभी 12 तारीख का बयान है उनका लेटेस्ट.
1: ओमप्रकाश राजभर ने भी आज कहा है.
2: तो वही तो कहा है कि बिना लहसुन प्याज के ये मछली खा रहे हैं. मेरा हर स्थान पर जाना होगा. निषाद समाज बुलाएगा उसके यहां भी जाऊंगा, हरिजन बुलाएगा उसके यहां भी जाऊंगा, दलित बुलाएगा उसके यहां भी जाऊंगा, और कोई मुस्लिम बनाएगा, हम सबको मानते हैं. आपको मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानते हैं, सबके साथ खड़े रहेंगे.
1: आपको सर्व हुआ, आपने खाई, ये सवाल
2: है. अगर कोई फोटो आपके पास है तो दिखा दें. मैं योगी जी से कहूंगा शर्त लगा लीजिए, अगर योगी जी फोटो जारी कर दें, मैं अपना आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा. और या वो साबित नहीं कर पाएंगे तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से.
1: वो कह रहे हैं कि आप अयोध्या मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम राम राम कर रहे थे और वहां उस जगह
2: मैंने कह दिया कि अगर उनके पास मेरे वहां पर फोटोज उनके पास हैं, मैं अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दूंगा. और नहीं, योगी के अंदर थोड़ी सी भी गैरत अगर है, थोड़ी सी भी संतत्व है, थोड़ी सी भी गेरुआ वस्त्र पहन के रक्षा करते हैं, तो तत्काल उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा.
1: अयोध्या के बाहर जाकर आप लोग
0: All right, so there was a controversy that has been generated over eating of fish. More news coming in at this point in time. The Chief Minister has now hit out at the Congress over the Ayodhya fish feast controversy, claiming Congress disrespects religion, heritage. The jive is Ram Ram chants, but fish feast is happening in the month of Saman. Even a chameleon would be ashamed, says Yogi Adityanath. Fish eating can happen outside Ayodhya, says the Uttar Pradesh Chief Minister, with this big controversy that has been generated over eating fish. Listen in to what the CM said.
3: Ramgadi mein darshan karne le jaate hain aur bahar jaakar ke machli ka daawat udhate hain. Ye Ram Ram chillate hain. Beshrami ki bhi ek seema hoti hai. Kisne kaha tha phir mandir jaane ke liye? Are jo khana tha bahar kha lete, Ayodhya ke bahar kha lete. Lekin उनके कार्यालय में यह है, इनका दोहरा आचरण है. गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने. तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं।
0: Samarth is getting in more details. This controversy has been handed over to the Bharatiya Janata Party, to the government in the state of UP on the platter, isn't it? In spite of the defense from Ajay Rai. Samarth.
4: We are seeing Yogi Adityanath lambasting the Congress party over the same political surface. And now Ajay Rai, while speaking to Indian Press, is clarifying that he did not eat fish during that particular bowl, that particular event of Nishad Samaj in Ayodhya. But the big thing out here that Ajay Rai has also demanded the resignation of PM Yogi Adityanath if he gets any, if he fails to get any picture of Ajay Rai having fish in that particular event. Though also Ajay Rai claims that he will also resign from the post of the state chief if any BJP leader can surface the photograph of him eating fish in that particular event. So it has become a political thing, and while on the other end we see the UP cabinet ministers Om Prakash Rajbhar and Sanjay Nishad themselves claiming that fish is vegetarian without garlic and onion. So this is these kind of statements also in a way making things difficult for the BJP at one end, because both are the alliance partners of the BJP and the cabinet ministers in the UP government. While on the other hand, we can clearly see the same Yogi Adityanath remarks, where he clearly says that at one end, before Congress used to speak about the Chandra Chorian and other things, embezzlement issues of Ayodhya, while on the other hand, they did participate in such events where fish is being served on the holy month of Sawan. So that's a big thing. BJP versus Congress at one end in Uttar Pradesh is going to be working. Will fish politics further move?
0: Okay, I'm going to leave it there for the moment. Samarth Srivastava with the very latest on that story. The Congress has put out a defense, but the Chief Minister says that even a chameleon would be ashamed of doing what the Congress is doing. Fish eating, it was the controversy over a feast that has happened in the state of Uttar Pradesh and particularly in Ayodhya, adding really a fresh political flashpoint to Ajay Rai, the Congress in charge of UP's visit to the, to the holy city. More news coming in. Desi assault rifle test fired in Uttar Pradesh's Amethi, India's first indigenous AK-203 Sher has been fired. Encouraging results in burst firing trial and images on your screens at this point in time. Armed forces trials to begin in the month of September is what we are learning. The goal here is one AK-203 rifle for every 100 seconds. About 6 lakh rifles to be delivered by the year 2030 December.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA। अब मैं क्या ही बोलूं?
3: परिवार अटूट भरोसा।

आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And we have news just coming in. We have politics here peaking over the Ayodhya fish feast controversy. Minister O.P. Rajpal says fish without onion, garlic is vegetarian. Uttar Pradesh Minister Sanjay Nishad has backed fish feast here. Nishad saying that consuming fish is normal for us. Didn't eat fish inside the temple and chant Ram. So that's not what we did.
1: Sanjay Nishad ji, मछली खा रहे हैं आजकल आप?
2: अरे हम निषाद हैं, मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय, हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली न हो तो जिंदा कैसे रहेंगे? अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद। मछली खा के जिंदा रहते हैं ये पिछले बेईमान लोग हैं। सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे, आज तो योगी जी कम से कम मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं। जिंदा तो मछली नहीं खाएंगे, निषादों का परंपरा है। उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आके मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के आत्मबाल सखा भी हैं और मछली भी खाते हैं।
1: मछली वेज है या नॉन वेज है?
2: अरे यार मछली अब कब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉनवेज है, तो मैं भी उसको कह दिया उसमें क्या कहता है। वैसे मछली सुबह उत्तर प्रदेश का प्रियाम्बुल है, मछली तीर धनुष जल राजा नल निशान।
1: वेज है कि नॉनवेज?
2: ना हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर और निकाल दिया तो अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा।
0: Samarth has more on that story. Samarth, we've seen this matter. The feast where fish was served really become a big talking point in the state of Uttar Pradesh, even with the BJP, the chief minister, going after the Congress, isn't it?
3: Well, exactly. We have seen what CM Yogi Adityanath has clearly said, Shreya, in this particular matter in Raebareli, and in a way took down the Congress party. While on the other hand, UP Cabinet Minister Sanjay Nishad, while speaking to India Today TV, clearly said that fish is not non-vegetarian. Yes, if it could be, if it is consumed with garlic and onion, it becomes vegetarian. It becomes non-vegetarian. So that's a big remark coming from, firstly, by Om Prakash Rajah, one cabinet minister. Secondly, by another cabinet minister, Sanjay Nishad. And these statements coming at a time when BJP is countering Congress party over the event where fish was served amid the Nishad Samaj in Ayodhya. So that's a contradictory statements coming from UP cabinet minister. While on the other hand, CM Yogi Adityanath has gone down Ajay Rai and clearly said that at one hand you call about embezzlement in Ayodhya and while on the other hand you participate in such events and consume fish in such events at a time of Shravan, at the time of the holy month of Shravan. Also after taking blessings from Lord Hanuman at Hanumangadi, though it's 38 kilometers from Hanumangadi, CM further says that if you had to eat fish or non-vegetarian, you should have at least left Ayodhya on the Shravan mass and have eaten anything you want to. But you haven't, you have gone into that particular thing. This is something anti-Sanat, and that's what CM Yogi Adityanath has clearly took down Congress party and Ajay Rai especially. While on the other hand, we have spoken to Ajay Rai over this particular matter. Ajay Rai says that he hasn't eaten fish, and if any photograph could be sent by BJP, he is ready to in a way submit his resignation as a state chief. But if BJP fails to prove that he has eaten fish, then CM Yogi Adityanath must step down from from the post of chief minister. So yes, it has become a political thing in the fish politics has literally making rounds on social media, and now we are getting a statement from two cabinet ministers, Sanjay Nishad and Rajbhar. And earlier we saw Ajay Rai speaking in his favour while CM Yogi Adityanath lambasting Congress party over the same. Back to you.
0: Very interesting, where we have the allies of the BJP there essentially saying that what's wrong with this, or indicating that there is nothing wrong with this, isn't it? Samarth with the very latest on that story. A political controversy brewing in the state of UP after fish was served at a political welcome event for the Congress chief there, Ajay Rai, in Ayodhya during the holy month of Sawan. Chief Minister Yogi Adityanath called the Congress leaders devotees of Babri, claiming that they speak of Lord Ram and they have daggers in their pocket. That's what he said. He's accused the Congress of disrespecting Ayodhya's heritage, saying that even a chameleon would be ashamed. Congress's UP chief Ajay Rai has it back, challenging Yogi Adityanath to prove that he'd ever eaten fish. He said he would resign as the state Congress chief if such proof was produced, and demanded that Yogi step down if he failed to prove the allegation. Defending his presence, Rai said he attended a Nishad community event where fishing and eating fish are traditional, invoked Nishad Raj's association with Lord Ram. He also hit out at the BJP over a viral photo allegedly showing its national president Nitin Nabin eating chicken in Andhra Pradesh, mocking the party's claim that it was jackfruit. The Congress has rallied behind Rai, dismissing the controversy as a distraction from larger issues like Ram Mandir donation theft. The organizer from the Nishad community defended the meal, citing community traditions, individual constitutional rights, right to eat, basic freedoms, argued that private dietary choices are not the issue.
4: मानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है, इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं।
1: यूपी की सियासत में मछली ने जगह बना ली है और आप एक जगह गए अयोध्या में, इसको लेकर इस वक्त बीजेपी की तरफ से फिलहाल तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर?
5: देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, सबके सामने वो फोटोज वायरल हो रहे हैं, सबके सामने फोटोज हैं, और बाद में सफाई देते हैं कि मैं कटहल खा रहा था। मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में गया था, निषाद समाज ने कार्यक्रम रखा था और वो मछली बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं, उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका सेवन किया और उनके तो परंपरा में है।
1: आपको सर्व हुआ, आपने खाई, ये सवाल है?
5: अगर कोई फोटो आपके पास है तो दिखा दें, मैं योगी जी से कहूंगा शर्त लगा लीजिए, अगर योगी जी फोटो जारी कर दें, मैं अपना आज कैमरा कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा, और या वो साबित नहीं कर पाएंगे तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री।
0: And my colleague Anjali Pandey has spoken with Congress leader Akhilesh Pratap Singh, who was also present at this particular Congress event in Ayodhya.
6: एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अभी सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ का वेलकम इवेंट अयोध्या में रखा गया था उसमें मछली सर्व की गई थी, जिसके बाद बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो हलाल हिंदूज हैं जो कि मछली भी खाते हैं सावन के महीने में।
7: जरा बताएं कि किसको सर्व की गई थी? अजय राय को सर्व की गई थी।
6: इस इवेंट में बनाई गई थी, सर्व की गई थी, वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी
7: गई थी। वो इंटीरियर गांव था, 40 किलोमीटर दूर था। और कब सर्व की गई, कार्यक्रम कब था कांग्रेस का, ये भी जरा बताएं।
6: नहीं, आप बताइए अखिलेश प्रताप जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब देने का काम आपका है।
7: ये मछुआरों समाज का प्रोग्राम था, मछुआरे समाज उनका प्रोग्राम था, फिर रात में उन लोगों का भोज कार्यक्रम रात में था।
6: तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम अजय राय जी के लिए था ही नहीं?
7: नहीं, वो तो हम भी थे कार्यक्रम में, हम खुद थे
6: जी,
7: हम खुद थे, हम लोग 2:30-3 बजे वहां से कार्यक्रम खत्म हो गया, बाकी कार्यक्रम रात का था उन लोगों का।
6: लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तो दिन की ही आ रही हैं, जिसमें कि लोगों को मछली खाते हुए और बनाते हुए देखा जा रहा है।
7: 2-3 बजे के बाद उन लोगों ने बनाना शुरू किया था, 3-4 बजे के बाद बनाना शुरू किया होगा।
6: अखिलेश प्रताप जी, आप ये कह रहे हैं कि आप भी इस प्रोग्राम में गए थे, अजय राय जी भी गए थे, लेकिन आप लोगों के समय तक मछली नहीं बनाई गई थी, आप लोग जब वहां से निकल गए तब जो निषाद समाज के लोग हैं उन्होंने अपने लिए मछली बनाई।
7: हम लोग का सारे लोगों का भोजन जब हम लोग अयोध्या से चले, रास्ते में एक ढाबा था, हम लोगों का भोजन अजय राजी और जितने और कांग्रेसी थे 40-50 एक ढाबे पे हुआ, कार्यक्रम हुआ वहाँ, 2-2.5 बजे खत्म हो गया, हम लोग सब लोग चल दिए। उस समाज का अपना भोजन था रात में।
8: भारत वर्ष में 1926-1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं।
9: इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो। चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में, कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।
10: कांग्रेस का कल्चर है भोज देना। कांग्रेस कुछ मानती तो रहे, मानती तो ऐसा नहीं करती कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं। एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरे तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का।
11: अजय राज आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं, और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया, और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इनकी स्वागत में अर्पित लॉन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवर यात्रियों की मार्ग है जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
0: Chief Minister stepping up the attack over the Ayodhya fish row. Yogi Adityanath calls Congress leaders devotees of Babri. Targets the Congress state president Ajay Rai. Here Yogi Adityanath slams Ayodhya fish feast, says Congress is insulting heritage. Now, in spite of the clarifications that are coming in, the BJP is unrelenting in its attack. Babri Bhaks, he says, controversially insult Hanuman. That is what Yogi Adityanath has said. In fact, we'll put out that soundbite of the Uttar Pradesh Chief Minister wherein he's spoken in this fashion. We have that soundbite. Let's take a listen.
12: Pradesh ke adhyaksh ne to sabhi hadein paar kar diye hain aur Congress ke vastavik sanskar ko bhi ujagar kar diya hai. Kal wo Hanumangadi gaye the Ayodhya mein. Hamara pavitra dham hai. Badi aastha ke saath, sattvik bhav ke saath hum jate hain. बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहन और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
0: Samarth is with us for the very latest on that story. This is the BJP here sharpening its attack, saying that on a Tuesday you are insulting Lord Hanuman. They're calling the Congress leaders, particularly the Uttar Pradesh chief of the unit, Babri Bhakt.
3: Well, exactly. These are some serious remarks by CM Yogi Adityanath, where he's calling congressmen in Uttar Pradesh as Babri Bhaks and not Hanuman Bhaks. He's referring to Lord Hanuman, that Lord Hanuman has a power to, in a way, erase every problem, every enemy even. But he clearly refers that Congress party does not believe in Hanuman, but the party believes in Babri. And that's why they are the Babar Bhaks. This is what CM Yogi Adityanath has to say. He even used a Hindi quote where he says that Muh mein Ram bagal mein churi, where he in a way tries to explain the public out there in that particular public address that Congress party is in a way leading that particular issue of Ayodhya embezzlement, and on the other hand, after taking blessings from Lord Hanuman and Hanumangadi, going after in one particular event and having fish in that particular event at a time when Shravan Mass is on in India. So that's a remark from CM Yogi Adityanath, where he could be seen countering Congress party over the fish. Mm-hmm. A party that was held in a Nishad Samaj event in Ayodhya, where Ajay Rai, UP Congress chief, was the chief guest. While on the other hand, Ajay Rai says that he hasn't eaten fish. If they have any proof, they must show.
0: That's back right. That was the Congress is saying, that he's a vegetarian, and even if he isn't, so what, is what the Congress has said. I'm going to thank you for the moment, Samarth, with the very latest on that controversy. With that, it's a wrap on this edition. Anisha Mathur getting you the very latest on the other side of this very quick commercial break. Thank you very much.

आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरे शादी के ये कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
5: परिवार अटूट भरोसा।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: All right, the top news that's coming in is from Maharashtra. And one by one, we are going to bring you all the top breaking news of the day. This reminds me of some years ago in Mumbai, what appeared to be a usual affair. There was a protest that was organized in Maharashtra. An auto rickshaw driver has alleged that he was beaten up in Kandivali on Monday morning during an auto driver protest. Now, this is a Marathi-speaking auto rickshaw driver. So why was he then thrashed? It looks like some auto drivers were protesting against the compulsion of speaking Marathi language. They tried to stop the rickshaws from plying. And that is when he appeared to have backed this Marathi mandate for the auto drivers and got into a confrontation with others. And that is when he's alleging that he was beaten up by the group. So was it among the auto drivers that the situation escalated? And for those of us who've known, especially how, whether it was the Shiv Sena earlier or even the MNS later, that indulged in these actions of beating up other, especially auto drivers who were not from Maharashtra. What happened here this time? Let's listen.
1: आप उस वक्त सुबह में क्या कर रहे थे, भाड़ा लेकर जा रहे थे, जब हादसा हुआ क्या हुआ?
2: मैं हिंदुस्तान नाका से कांदिवली स्टेशन के लिए भाड़ा लेके आ रहा था. उस टाइम में क्रोमा के सामने आरएनए के बगल में उस जगह पे मेरे को रोका, मेरे गाड़ी में से भाड़ा उतारा और मेरे को खींचने लगे. मेरा वाइपर भी ऐसा मोड़ दिया पूरा और मेरे को खींचने लगे. मैं बोला क्यों, तो बोले मराठी की शक्ति की है इसलिए हम लोगों ने बंद किया है. तो बोला मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरे को मराठी आती है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आपका प्रॉब्लम है, आप उनसे बात कर दीजिए जिन्होंने बंद किया है. उनसे आपको जो शक्ति किया उनसे करो. तो उन लोगों ने मेरे को खींचने लगे, मैं इसलिए साइड में लगाया. तो चार पांच जन आए और मेरे को मारने लगे.
1: आप जब मारा ऑटो के अंदर बैठे हुए थे या
2: ऑटो के बाहर निकला? और उस टाइम में वो चार पांच जन आए और मेरे को मारने लगे. उसमें मेरे को इधर ऐसा मुंह को भी लगाया, खून निकल रहा था. और मेरा एयरफोन था गले में, वो भी पूरा तोड़ दिया उन लोगों ने.
1: उसके बाद पुलिस स्टेशन में क्या अभी तक कार्रवाई हुई?
2: अभी एफआईआर किए हैं उनके ऊपर.
1: क्या आज की घटना हुई, प्रोटेस्ट में एक मराठी ड्राइवर को मारा गया, इसकी बात सामने आ रही?
3: मुझे एक कॉल आया, मराठी एक रिक्शा चालक था शेजुअल करके, उसे कुछ रिक्शा वालों ने, वो पैसेंजर लेके जा रहा था, रिक्शा अड़ाया और उनको बोला हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंद करे तो तू भी करो. वो बोला नहीं, मुझे मराठी आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं पैसेंजर लेके जाऊंगा. तो उस लोग ने जबरदस्ती उसको माना, कोशिश किया लेकिन नहीं माना, तो उसकी रिक्शा की तोड़फोड़ की और उसके बाद उसको भी मारा, मार करके पैसेंजर को भगा दिया. ये बात मालूम पड़ते ही मैं मेरे सरकारी जो थे महाराष्ट्र सैनिक उनको वहां पे भेजा था बड़तोप. वहां पे मैं भी पहुंचा. मैं पहुंचते ही वहां जो शेयरिंग रिक्शा स्टैंड था वहां पे जितने भी रिक्शा खड़ी थी उनको मैं बोला ये पार्किंग प्लॉट नहीं है, अगर तुमको रिक्शा बंद करने का कुछ भी प्रॉब्लम है तो रिक्शा यहां से हटाओ और जाके किधर करना है इधर कर, यहां पे नहीं करने का. तो लोग ने हमको रिक्शा चलाना है, ये तोड़फोड़ हुआ इसलिए डर के मारे हमने बंद किया. मैं बोला चालू करो, तो लोग ने सबने रिक्शा चलाना चालू कर दिया. उसी बीच हम लोग उसको ढूंढ रहे थे जिसने उससे मुबत्तर बातें नहीं, रिक्शा चालक ने मारपीट की. वो रिक्शा वाला हमको मिला लेकिन वो जरा उम्र वाला था इसलिए हमको खेद है कि हम अपने मन से स्टाइल उस पर दिखा नहीं पाए. लेकिन हमने उसको पकड़ के पुलिस के ताबे में दे दिया है, पुलिस उस पर एफआईआर ले रही है.
0: So this is again the issue of whether Marathi should be spoken by one and all, even the ones who possibly cannot speak or are not from the state. How do they then earn their livelihood? Mustafa Sheikh got us that exclusive reaction of the auto rickshaw driver who's alleging he was beaten up and assaulted. Mustafa, help me understand here. What was the problem? What was the reason of the escalation? And is the government ensuring that there is peace on the streets?
4: Well, there are some auto drivers who are saying that they are being checked by the RTO official again and again, even after knowing Marathi. They are saying that some stamp or signature should happen for people who know Marathi. And that's why there is some fear, and that's why in Kandivali, in Laljipada area, the auto drivers had decided not to ply. They were also stopping many auto drivers in the morning from flying or working. And that's when one of the auto drivers was assaulted, who was a Marathi-speaking auto driver, and hence he has complained to the police. Now there is the job of the government to come on the ground, assure people that they should not be fearful or of harassment, and they should continue to do their job, as well as try and learn, speak basic Marathi, which is now the law of Maharashtra. Back to you.
0: Stay on with me, Mustafa, because my team is telling me that more updates are coming in. There are more reactions that have come in on the story. Let's listen into them.
1: Sir, ye jo protest aaj ka hua, us bare mein kya aapko jankari mili? Kaun log the? Kya hua?
5: अभी देखो हम लोग को तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला, लेकिन वो सब बाहर वाले, हम लोग को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरा पैदा ही इधर है, मैं साउथ इंडियन हूँ और मेरे को मराठी वगैरह आता है। हम लोग के लोग जिसको उसको नहीं आता थे, यूपी वाले स्टैंड अध्यक्ष जिसको नहीं आता है, उन्होंने भी स्कूल में जाके इंटरव्यू वगैरह देके पढ़ाई किया है और हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जितना हमसे हो रहा है उतना हम लोग सर्विस दे रहे।
1: आप उत्तर भारतीय है, पिछले दिनों में मराठी सीखी है, क्या विषय चल रहा है?
6: सीखा।
1: तो जो लोग अभी बोल रहे थे शक्ति मतलब रोकने का रोड में कोशिश हुआ कांदी,
6: धंधा करना है तो मराठी तो सीखना ही पड़ेगा, यहाँ रहना है तो मराठी तो आना ही चाहिए।
1: तो सीख रहे हैं आप लोग सब? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ है आप ऐसा इस तरह?
6: थोड़ा मैं बोलतो सिखाई प्रयत्न पन करतो।
0: Moving on now, Manu Smriti is back in political corridors with the kind of showdown that we are witnessing over whether it needs to be red for Lhud or not. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is raining down heavily on Rahul Gandhi, leader of opposition in the parliament, over how Rahul Gandhi mentioned Manu Smriti to target the BJP and the RSS. Yogi Adityanath, the UPCM has basically added that at least read the Manu Smriti, rather than insulting the heritage of this country, the history and culture of this country. Rahul Gandhi had basically mentioned Manu Smriti and then targeting the BJP RSS, and we listened into what exactly had happened. But this is where the BJP leadership is charging against him. UP Chief Minister is now saying Rahul insulted India when abroad and adding that abusing PM is like abusing institutions. Rahul Gandhi has triggered this sharp BJP counterattack. The BJP is turning the charge back on Rahul Gandhi, accusing him of lecturing country on women empowerment while questioning its own record. The BJP says NDA has more women chief ministers and union ministers and argues that real empowerment is about who gets political power, not slogans or selective outreach. The BJP has gone further, questioning Rahul's opposition to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, asking why he voted against, or his party voted against, women's quota law. Rahul Gandhi was basically speaking at Chhatron Ki Goonj in Pune on Saturday, accusing BJP RSS of wanting to cage women, accusing the BJP and RSS of promoting what he calls an anti-women mindset of the two parties, invoking Manu Smriti and saying the fight is to break patriarchy and give women their rightful place.
7: Pradhan Mantri keh rahe hai ki gaali dena, कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी, तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते।
8: राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं, मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी।
9: तो राहुल गांधी शुड फर्स्ट ट्रैश द हिपोक्रेसी बिफोर ही वैक्सेस एलोक्वेंट स्लोगन्स लाइक स्मैश द पेट्रियार्की, बिकॉज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज रियली डिस्मल व्हेन इट कम्स टू वुमन एम्पावरमेंट। दे हर्ल्ड अब्यूसेस एट द लेट मदर of Prime Minister Modi ji, and we saw how Rahul Gandhi engaged in cheap banter and remained a silent spectator when a colleague of his made vulgar insinuations about the foreign head of state of a foreign nation who happened to be a woman. This is the track record of the Congress party.
10: Pradhan Mantri Modi ne sabhi rajnitik dalon se ye appeal ki hai ki wo twarit roop se mahila arakshan ka ye sankalp देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
11: 10,000 करोड़ पे के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है, कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही, उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1500 रुपये प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज तो जनता कांग्रेस से पूछती है, क्या हुआ तेरा वादा, सर नहीं है सुखू जी का नेक इरादा।
12: चाहे राहुल गांधी हो या समाजवादी, तृणमूल, डीएमके और इस तरह के नेताओं की एक बड़ी फौज है जो सनातन द्रोही गैंग के रूप में काम कर रही है। अभी जिस प्रकार के चुनिंदा उद्धरणों को निकाल करके उसकी गलत व्याख्या करके और अपनी जो प्रदूषित जो मानसिकता है उससे भोले वाले बच्चों और बच्चियों के शुद्ध मन को अशुद्ध करने का जिस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें सफल नहीं होने वाले।
0: Piyush Mishra joins me for the latest on that. Piyush, basically the Uttar Pradesh Chief Minister is suggesting that Rahul Gandhi is not well read and that is why what he's saying is out of ignorance. How do you think is the Congress going to push for it? Do you think the BJP will jump on this? Because Manusmriti has been a sensitive issue. It's constantly come forth while many have said, but who really follows it in spirit today?
13: Well, Pooja, this is now becoming a huge political controversy. Initially, BJP was avoiding making comments on this, but when it became such a huge comment, has a huge controversy, now we are seeing leaders like Yogi Adityanath, Smriti Irani and various others coming to the fore, and they are now criticizing Rahul Gandhi for talking about Manusmriti. In fact, Smriti Irani has gone on to say that when Rahul Gandhi is talking about all these things, then he should first ask his party members to support Women's Reservation Bill. At the same time, she's also adding that Congress party should let the full rendition of Vande Mataram at the Congress headquarters, which also invokes the goddess Durga. So BJP has also come out with her defense, saying that Rahul Gandhi is not well read. He is just making a controversial statement. He should first implement the same in his own party and in his own family. In fact, BJP MP Nishikant Dubey had gone on to say that Rahul Gandhi should give more opportunities to Priyanka Gandhi instead of going to such places, such political events. Now we'll have to see how the Congress is going to react on this. Why Why? Because the various BJP leaders from the state of Uttar Pradesh to the national to the central BJP, they all have come out and they are now slamming Rahul Gandhi after the kind of comments which he made in Pune. As of now, there is no comment which is coming in from the Congress leaders clarifying to what the BJP leaders are hitting back at Rahul Gandhi.
0: Okay. Piyush, keep tracking all the latest on that, because this is now debate about whether Rahul Gandhi understands Hindus, Hinduism, and how is the BJP going to clash over this. Appreciate you joining us for all the latest on that. Now, the big debate in Ayodhya presently is about the fish, to eat or not to eat. That's what happened in Ayodhya when Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Rai had an event where to welcome him, fish was served. So if you're wondering, why is that a debate? It is, as always, food is a personal choice. But one, because the month is of Sawan, where predominantly vegetarian food is served and consumed. And two, it is in Ayodhya after all, or nearby area. So we'll try and get clarity for you of why this is such a debate and how is the Congress defending it. UP Congress Chief Ajay Rai has hit back, challenging Yogi Adityanath to prove that he had ever eaten fish. Rai said he would resign as state Congress chief if such evidence was even produced, demanding that Yogi Adityanath step down if he failed to prove the allegation. Chief Minister Yogi Adityanath basically had called the Congress leaders devotees of Babri, claiming that they have Ram on lips, dagger in the pocket. He accused the Congress of disrespecting Ayodhya's heritage, saying that even a chameleon would be ashamed of this. So, Zuban pe Ram or Churi jo hai, wo saath mein rakhi. That is what Yogi Adityanath had said. But defending his presence, Ajay Rai has said that he attended a Nishad community event where fishing and eating fish are traditional, invoking Nishad Raj's association with even Lord Ram. So Rai has hit out at the BJP over a viral photo. This photograph on your screen, that is what is being used to allege that Nitin Naveen was even eating chicken in Andhra Pradesh. That's how the Congress party is hitting back, mocking the party's claim that it was jackfruit. The Congress has rallied behind Ram, dismissing the controversy as a distraction from larger issues like Ram Mandir donation theft. While the organizer from the Nishad community defended the meal, citing community traditions, he argued also about private dietary choices. UP Minister Sanjay Nishad has defended community's tradition and in fact saying that the fish did not have onion and garlic. So technically, it is vegetarian. He added that those attending the event did not eat fish inside a temple while chanting Ram Ram.
14: Pradesh ke adhyaksh ne to sabhi hadein paar kar diye hain aur Congress ke vastavik sanskar ko bhi ujagar kar diya hai. Kal wo Hanumangadi gaye the Ayodhya mein, hamara pavitra dham hai. Badi aastha ke saath, satvik bhav ke saath hum jate hain. बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है. बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार. सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं. लेकिन बहन और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा. हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी.
15: यूपी की सियासत में मछली ने जगह बना ली है और आप एक जगह गए अयोध्या में, इसको लेकर इस वक्त बीजेपी की तरफ से फिलहाल तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं. आपका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर?
16: देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है. इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, सबके सामने वो फोटोज वायरल हो रहे हैं, सबके सामने फोटोज हैं. और बाद में सफाई देते हैं कि मैं कटहल खा रहा था. मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में गया था, निषाद समाज ने कार्यक्रम रखा था और वो मछली बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं. उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका सेवन किया और उनके तो परंपरा में है.
15: आपको सर्व हुआ, आपने खाई, ये सवाल है.
16: अगर कोई फोटो आपके पास है तो दिखा दें. मैं योगी जी से कहूंगा शर्त लगा लीजिए, अगर योगी जी फोटो जारी कर दें, मैं अपना आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा. और या वो साबित नहीं कर पाएंगे तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से.
17: अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने

0: निंदनीय है, दुखद है। इनकी स्वागत में अर्पित लौन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवर यात्रियों की मार्ग है जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
1: इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो। चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।
2: कांग्रेस का कल्चर है भोज देना। कांग्रेस कुछ मानती थोड़े है, मानती तो ऐसा नहीं करती कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं। एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरे तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का।
3: Listen in now to former Chief Minister of Uttar Pradesh, who's also heading the Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, and who said this over this controversy.
4: एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अभी सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ का वेलकम इवेंट अयोध्या में रखा गया था उसमें मछली सर्व की गई थी, जिसके बाद बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो हलाल हिंदूज हैं जो कि मछली भी खाते हैं सावन के महीने में।
5: जरा बताएं कि किसको सर्व की गई थी? अजय राय को सर्व की गई थी।
4: इस इवेंट में बनाई गई थी, सर्व की गई थी, वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी
5: गई थी, वो इंटीरियर गांव था, 40 किलोमीटर दूर था। और कब सर्व की गई, कार्यक्रम कब था कांग्रेस का, ये भी जरा बताएं।
4: नहीं, आप बताइए अखिलेश प्रताप जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब देने का काम आपका है।
5: ये मछुआरों समाज का प्रोग्राम था, मछुआरे समाज उनका प्रोग्राम था, फिर रात में उन लोगों का भोज कार्यक्रम रात में था।
4: तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम अजय राय जी के लिए था ही नहीं?
5: नहीं, वो तो हम भी थे कार्यक्रम में, हम खुद थे
4: जी,
5: हम खुद थे। हम लोग 2:30-3 बजे वहां से कार्यक्रम खत्म हो गया, बाकी कार्यक्रम रात का था उन लोगों का।
4: लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तो दिन की ही आ रही हैं, जिसमें कि लोगों को मछली खाते हुए और बनाते हुए देखा जा रहा है।
5: 2-3 बजे के बाद उन लोगों ने बनाना शुरू किया था, 3-4 बजे के बाद बनाना शुरू किया होगा।
4: अखिलेश प्रताप जी, आप ये कह रहे हैं कि आप भी इस प्रोग्राम में गए थे, अजय राय जी भी गए थे, लेकिन आप लोगों के समय तक मछली नहीं बनाई गई थी। आप लोग जब वहां से निकल गए तब जो निषाद समाज के लोग हैं उन्होंने अपने लिए मछली बनाई।
5: हम लोग का सारे लोगों का भोजन, जब हम लोग अयोध्या से चले रास्ते में एक ढाबा था, हम लोगों का भोजन अजय राजी और जितने और कांग्रेसी थे 40-50 एक ढाबे पे हुआ, कार्यक्रम हुआ वहाँ, 2-2:30 बजे खत्म हो गया, हम लोग सब लोग चल दिए। उस समाज का अपना भोजन था रात में।
3: Jammu Kashmir Chief Minister Omar Abdullah coming out in support of the Kashmiri Pandits, especially the ones who've been receiving threats lately, only because they decided to head back to the valley to reclaim their rights and settle down. Omar Abdullah has said Kashmiri Pandits should not receive any threats. Our security officials must take note of this seriously and make sure that they are safe. Law and order is currently with the Lieutenant Governor, he's adding, and he must ensure safety of Kashmiri Pandits. So, this is what the Chief Minister has said, putting also the onus on the Lieutenant Governor.

0: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं। हम किसी किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटेटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माझभात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहो क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहन और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra, at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses, and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. 36 were rescued, but 3 could not be saved. 6 critically affected newborns were shifted to a nearby super specialty hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहां पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: फॉर देयर फैमिलीज दिस इज नॉट जस्ट अ फायर, इट इज अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रीफ एंड अ डिमांड फॉर आंसर्स।
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ होता क्या नहीं इसके बारे में। एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: The Maharashtra government has ordered a high-level probe and announced 5 lakh rupees aid for victims' kin.
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हमारे लिए भी है। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज।
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब ऐसे ही भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Let's take a break at this point, but as we end tonight, I want to leave you with my image of the day, where a few hours of rain yet again brought Delhi NCR and particularly Gurugram to a standstill, with several parts of the region waterlogged, vehicles left stranded. The millennium city, Gurugram, with the highest per capita income citizens per square kilometer, finds that its infrastructure keeps crumbling. Flooded roads, waterlogging, traffic chaos. Well, who's going to speak up on these real issues? That's the big question. One of the biggest challenges for India in the future is the quality of our urban infrastructure. Think about it. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: This week, India Today magazine examines the Cockroach Janata Party and its growing political ambition.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मछुआरा समाज में तो खाते ही हैं मछली, तो उनके लिए एक आम भोज है। और आप ही के सहयोगी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद तो अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मछली नॉनवेज है ही नहीं, आप उसको प्याज और गार्लिक के साथ खाएंगे तो नॉनवेज है, वरना वो नॉनवेज नहीं है।
1: अब वो उनके हिसाब से वो नॉनवेज कैसे हो सकता, हम तो नहीं समझते भाई। अब वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा।
0: मतलब आप मान रहे हैं कि मछली नॉनवेज नहीं है?
1: अब प्याज लहसुन पड़ता है तो कैसे नॉनवेज है?
0: मतलब प्याज लहसुन के बिना नॉनवेज है और पढ़ने के, मतलब बिना नॉनवेज नहीं है और प्याज लहसुन पढ़ने के बाद नॉनवेज है।
1: बिल्कुल, जब वो कह रहे हैं तो अब उनके हिसाब से तो है ये है।
0: तो फिर आप कांग्रेस को क्या प्याज लहसुन के डाल के नहीं खाना चाहिए था बिना खाए डाय खाए?
1: अब तो ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए ना कि आपने प्याज लहसुन के बिना बनाया था कि प्याज लहसुन डाल के बनाया था। अब तो ये कांग्रेस के लोग बता सकते
0: ऐसे
1: हैं।
0: कैसे डिफाइन कर सकते हैं मछली प्याज लहसुन डाल के नॉनवेज हो गई, बिना डाले नॉनवेज नहीं हुई है? आप खुद मुस्कुरा रहे हैं।
1: देखिए, जीव जीव आहार है। अब वो मछली है, मछली नॉनवेज कैसे हो सकती है? अरे वेज कैसे हो सकती है? मछली शाकाहारी कैसे माना जा सकता है? अब लोग मान रहे हैं भाई, खाने वाले लोग तो कह देते
0: लोग
1: हैं।
0: नहीं, आपके साथी कैबिनेट मंत्री हैं।
1: साथी मछली के माहिर लोग माहिर हैं, वो बेहतर जानते हैं। हम मछली के थोड़ा कमजोर जानकार हैं, इस नाते पूरी जानकारी नहीं है।

0: संजय निषाद जी, मछली खा रहे हैं आजकल आप?
1: अरे हम निषाद हैं, मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय, हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली नहीं हो तो जिंदा कैसे रहेंगे? अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद, मछली खा के जिंदा रहते हैं। ये पिछले बेईमान लोग हैं, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे। आज तो योगी जी कम से कम, मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं जिंदा, तो मछली नहीं खाएंगे। निषादों का परंपरा है, उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आके मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के आत्मबाल सखा भी हैं, और मछली भी खाते हैं।
0: मछली वेज है या नॉन वेज है?
1: अरे यार मछली, अब कब कब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉन वेज है, तो मैं भी उसको कह दिया, उसमें क्या कहते हैं। वैसे मछली सुबह उत्तर प्रदेश का प्रियाम्बुल है, मछली तीर धनुष जल राजा नल निशान।
0: वेज है कि नॉन वेज?
1: नहीं, हम कहते अभी तो जो WHO की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की, नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर और निकाल दिया तो, अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा?
2: एवरी पार्टी यू नो वेनरेट्स देयर ओन लीडर, दे हैव देयर ओन एम्बिशंस, देयर ओन फैंटेसीज एंड देयर ओन ड्रीम्स। इट्स बेसिकली अप टू देम टू हैव दोस काइंड ऑफ एम्बिशंस, बट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यू नीड टू कमांड द सपोर्ट ऑफ 272 MPs। एनी फॉर्मेशन और एनी पोलिटिकल पार्टी विच कमांड्स द सपोर्ट ऑफ 272 MPs एंड द लीडर ऑफ दैट फॉर्मेशन विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दे आर पोलिटिकल पार्टी विच इज सेंटर्ड अराउंड ए वेरी प्रोमिनेंट मूवी स्टार, सो दे कैन हैव देयर fantasies, dreams, ambitions, wishes for their leader. It is up to them. It's really their prerogative.

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra, at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses, and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. 36 were rescued, but 3 could not be saved. 6 critically affected newborns were shifted to a nearby super specialty hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहां पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: फॉर देयर फैमिलीज दिस इज नॉट जस्ट अ फायर, इट इज अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रीफ एंड अ डिमांड फॉर आंसर्स।
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ, होता क्या नहीं इसके बारे में। एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: The Maharashtra government has ordered a high-level probe and announced 5 lakh rupees aid for victims' kin.
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हमारे लिए भी। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज।
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब ऐसे ही भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Sugar prices have surged nearly 30% in just a month's time, putting sweets and festive celebrations under acute pressure. But what's driving this sharp spike, and are farmers actually benefiting from this? Take a look at this report.
6: That rasgulla you so relish could burn a hole in your pocket this festival season. Not just the rasgulla, but any sweet for that matter. Sugar prices have surged nearly 30% in just 1 month, from around 48 rupees per kg on July 23rd to 62 rupees now. The impact of the price rise just ahead of festivals like Raksha Bandhan and Janmashtami is already being felt.
7: अभी जो चीनी के रेट बढ़े हैं उससे आपके कामकाज पे या मिठाइयों की कीमत पर कितना असर पड़ा?
8: बहुत असर पड़ेगा. अब जैसे जो चीनी रहते हमें 43 की मिल रही थी, 45 की मिल रही थी, वही अब 70, 75 की, 80 की मिल रही है, तो कॉस्ट पे तो फर्क आएगा ही.
6: Farmers in Maharashtra, a major sugar producer, claim they are not benefiting from the price rise.
9: जिस तरीके से शुगर के भाव बढ़े हैं, कीमतें बढ़ी है, चीनी की कीमत बढ़ी है, तो एफआर के आधार पर किसानों को 20% ज्यादा भाव भी मिलना चाहिए और पहले जो गन्ना कट के गया है, जो उत्पादित हुआ है, उनको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा मिलना चाहिए.
10: चक्कर के रेट जो 40 रुपए थे, आज वो 80 रुपए पे रेट गए हैं. उसी हिसाब से किसानों को भी अगर 2,500-3,000 रुपए अगर गन्ने की अगर प्राइस होगी, तो वो प्राइस 3,000 से लेकर 7,000 तक का उसको भी दर मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए, ये मांगे हमने रखी.
6: While the opposition is blaming diversion to ethanol for the sugar price rise, the government claims global output has dropped, triggering the spike.
11: जिस चीज से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे, तो ये देश का क्या बनेगा?
12: All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures.
6: The authorities insist diversion of sugarcane to ethanol production for E20 petrol is not a reason for the surge.
13: जो चीनी के जो दाम बढ़े हैं उसके लिए जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक रीज़न है, और 25-26 इस साल में नेशनल लेवल पे जो चीनी का उत्पादन होना था उससे थोड़ा कम उत्पादन हुआ है, ये भी इसके लिए एक रीज़न है.
6: The Narendra Modi government has taken measures to bring sugar prices under control. It has capped stock limits of bulk buyers at 15 days. While states are also cracking down on hoarding, how soon can prices be brought under control needs to be seen. With Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: A viral video has put TVK Minister Kirtana at the center of a fresh political and sexism row after a woman in the clip was falsely identified as her. Kirtana has hit back at the moral policing, asking a basic question. Even if it were her, why should it even matter? By the way, this is not the first time that her clothes and personal choices have been dragged into political attacks. Take a look at this report.
6: In Indian politics, women are increasingly being used as weapons to set a course. This viral video was circulated to suggest the woman stepping out of the car was TVK Minister Kirtana. She says it is not her. But her question is sharper. Even if it were her, why should it matter? Kirtana has accused opponents of moral policing and manufacturing personal narratives when they cannot challenge the government on policy or performance.
14: Let's be honest. Nobody wants a government.
6: And this is not the first time. Just a month after taking oath as minister, she was trolled for wearing a suit. Her clothes became political ammunition. Then there is Trisha. Her name has repeatedly been dragged into attacks targeting Chief Minister Vijay. When political debate runs out of substance, sexism becomes the shortcut. This is not political debate. It is misogyny dressed up as politics. Women can take criticism. But why must the criticism so often pass through their clothes, relationships and dignity? Bureau Report, India Today.
5: That's all we had for you in this edition of News. Don't go anywhere. More news and updates continue on the other side of this short break.
15: You are watching India Today.

0: इसमें कोई शक नहीं कि छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस आ चुके हैं जहां पे उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा और उन्होंने प्रूफ भी दिए कि किस प्रकार से पैसा देकर उनसे वीडियोस बनवाए जा रहे हैं। तो दिखता है कि किस प्रकार से एक पीयर स्टंट राहुल गांधी कर रहे हैं, ना कि छात्रों के हित की कोई बात कर रहे हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहो क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।

0: हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं, हम किसी किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में, कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।
1: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेज। एम्प्लीफाई योर ब्रांड विद 100 मिलियन स्मार्ट इंटरनेट व्यूअर्स। टू एडवर्टाइज मेल अस एट sales@aajtak.com।

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. Thirty-six were rescued, but three could not be saved. Six critically affected newborns were shifted to a nearby super speciality hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहाँ पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: For their families, this is not just a fire. It is a lifetime of grief and a demand for answers.
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ, होता क्या नहीं इसके बारे में। एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: The Maharashtra government has ordered a high-level probe and announced 5 lakh rupees aid for victims' kin.
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हमारे लिए भी है। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज।
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब एसआई भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Let's take a break at this point, but as we end tonight, I want to leave you with my image of the day, where a few hours of rain yet again brought Delhi NCR and particularly Gurugram to a standstill, with several parts of the region waterlogged, vehicles left stranded. The millennium city, Gurugram, with the highest per capita income citizens per square kilometer, finds that its infrastructure keeps crumbling. Flooded roads, waterlogging, traffic chaos. Well, who's going to speak up on these real issues? That's the big question. One of the biggest challenges for India in the future is the quality of our urban infrastructure. Think about it. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

0: संजय निषाद जी, मछली खा रहे हैं आजकल आप?
1: अरे हम निषाद, हम मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय, हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली नहीं हो तो जिंदा कैसे रहेंगे? अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद, मछली खा के जिंदा रहते हैं। ये पिछले बेईमान लोग हैं, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे। आज तो योगी जी कम से कम, मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं, जिंदा तो मछली नहीं खाएंगे। निषादों का परंपरा है, उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आके मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के आत्मबाल सखा भी हैं, और मछली भी खाते हैं।
0: मछली वेज है या नॉन वेज है?
1: अरे यार मछली, अब कब कब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉन वेज है, तो मैं भी उसको कह दिया, उसमें क्या कहते हैं। वैसे मछली सुबह उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है, मछली तीर धनुष जल राजा नल निशान।
0: वेज है कि नॉन वेज?
1: ना हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की, नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा।

0: प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहन और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं, हम किसी किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra, at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses, and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. 36 were rescued, but 3 could not be saved. 6 critically affected newborns were shifted to a nearby super specialty hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहां पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: फॉर देयर फैमिलीज दिस इज नॉट जस्ट अ फायर, इट इज अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रीफ एंड अ डिमांड फॉर आंसर्स।
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ होता क्या नहीं। इसके बारे में एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: The Maharashtra government has ordered a high-level probe and announced 5 lakh rupees aid for victims' kin.
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हमारे लिए भी है। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज।
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब ऐसे ही भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Let's take a break at this point, but as we end tonight, I want to leave you with my image of the day, where a few hours of rain yet again brought Delhi NCR and particularly Gurugram to a standstill, with several parts of the region waterlogged, vehicles left stranded. The Millennium City, Gurugram, with the highest per capita income citizens per square kilometer, finds that its infrastructure keeps crumbling. Flooded roads, waterlogging, traffic chaos. Well, who's going to speak up on these real issues? That's the big question. One of the biggest challenges for India in the future is the quality of our urban infrastructure. Think about it. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

घड़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेश्रमी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है, उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अरबन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं?

0: प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा, हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं, हम किसी किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. Six were rescued, but three could not be saved. Six critically affected newborns were shifted to a nearby super specialty hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहाँ पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: For their families, this is not just a fire. It is a lifetime of grief and a demand for answers.
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ होता क्या नहीं। इसके बारे में एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: The Maharashtra government has ordered a high-level probe and announced 5 lakh rupees aid for victims' kin.
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हमारे लिए भी है। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: The opposition is demanding a concrete action plan to prevent such tragedies.
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब एसआई भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Let's take a break at this point, but as we end tonight, I want to leave you with my image of the day, where a few hours of rain yet again brought Delhi NCR and particularly Gurugram to a standstill, with several parts of the region waterlogged, vehicles left stranded. The millennium city Gurugram, with the highest per capita income citizens per square kilometer, finds that its infrastructure keeps crumbling. Flooded roads, waterlogging, traffic chaos. Well, who's going to speak up on these real issues? That's the big question. One of the biggest challenges for India in the future is the quality of our urban infrastructure. Think about it. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

घड़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है, उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अरबन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं?